उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चार पायों में से आठ जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह तीन अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो।

तो तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो, कह दो कि नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला, देखो यही सरीह नुकसान है।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: This is FM 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

मैं समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें।

0: दिल में था कि सब कह दूं, मगर जो दिल में था दिल में
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबव एफ एम 101।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: It sucks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Coming up next.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्रा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत कराची में पिपरी मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क की तामीर तेजी से जारी है। और रात न्यूजर्सी में कस देकर आलमी चैंपियन बन गया है।

0: Freak Socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

This is a fun one.

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पायदार मौशी तरक्की के हुसूल के लिए तमाम तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कैनेडा की वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। मोदी हुकूमत के हिंदुत्वा के इंतहा पसंद नजरिए ने भारत के दिफा मईशत और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया है। और वजीर आजम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर स्पेन को मुबारकबाद दी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

FM 101. A bale bale, o shower.

0: जाइए।
1: इसमें अपनी राय दे दी थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और एक ना टूटने वाला रिश्ता है कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ। हिजरत करने वालों की कुर्बानियां, हिजरत करने वालों की काविशें तारीख में हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहने की इच्छा रहता था। ये जो मजमूम साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर कॉज के खिलाफ, इसके पीछे एजेंडा और था, जलाओ घेराओ तशद्दुद की सियासत और ये सीटें खत्म करने की साजिश। ये सीटें खत्म करने की साजिश नहीं थी, ये पाकिस्तान से कश्मीर के रिश्ते को कमजोर करने की साजिश थी।
2: तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने कहा कि 27 जुलाई को आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में महाजरीन की नशिस्त।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: दिस इज FM 101।

मिल दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी,

0: Free socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.
5: FM 101.
6: FM 101.
7: FM 101. 101. 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: This is FM 101.

0: FM 101।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सा

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

All right. Welcome back once again. Radio Pakistan FM 101 के live on Lahore studio से आप सुन रहे हैं आज अहमदा खान को, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक जी 8 बजे तक. और बारिशों के मौसम में जब भी बादल आते हैं, बारिश होने लगती है, तुम याद आते हो, ऐसा होता है. लेकिन खैर जी, हम बारिश को इन्जॉय कर रहे हैं. बहुत सारे इलाकों में बड़ी खुल के बारिश हुई है. अभी हमारा भी हमारे साथ मौजूद थी और किस्मत से ही इनकी कॉल मिल गई, वरना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि आज कुछ बारिश इतनी ज़्यादा हुई है तो डिस्टॉर्शन का खतरा तो था ही था. बट एनीवेज जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे अच्छा लगा कि हम कॉल्स ले पाएंगे. हम कोशिश करेंगे जी 04 2111 0011 पर आप लोगों की ऑफ़ कॉल्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया. हमारा भी एक हमारी पहली कॉलर थी और क्या मज़े का इन्होंने जो है ना आज बारिश के मौसम को एंजॉय किया और क्या ही मज़ेदार, मतलब मैं कहती हूँ इन्होंने खा के इंजॉय किया होगा, मैंने सुनकर इंजॉय किया है कि वो क्या इन्होंने खाया कि इन्होंने तिक्का मसाला लगाया हुआ था गोश्त को और उसको शायद बेसन भी लगाया, उसको फ्राई किया, उसको खाया, उसके साथ चटनी और उसके साथ चाय. जी क्या बात है, जी क्या बात है. तो बारिश के मौसम को ना कहते छोटी छोटी चीज़ों को. मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ ना कि छोटी छोटी हैपनिंग्स को, छोटी छोटी इवेंट्स को और छोटे छोटे मोमेंट्स को जो है ना इन्जॉय करना चाहिए. जैसे अभी मैंने आप लोगों को मशवरा क्या दिया, आप लोगों ने खाए ही होंगे मैंगोज़. मैंने कहा मैंगोज़ इन्जॉय कर लें आप लोग, और क्योंकि मैंगोज़ का सीज़न जो है ना वो बिल्कुल अब कह सकते हैं नियर टू एंड है. खैर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो मुझे बताएंगे कि अभी नियर टू एंड है या नहीं है, बट स्टिल आई थिंक सो. मैंने हमेशा यही सुना है कि जी जुलाई तक जो है ना आपको खा लेने चाहिए, मतलब उसके बाद जो है ना वो नहीं होते, उस तरह का नहीं टेस्ट मिलता आपको. बट एनी वेज जी, आप लोग फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं fizz.com/FM11Lahore के पेज पर. आपने जाना है, पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर कोई बारिश वाला ट्रैक सुनना चाह रहे हैं तो वो भी हम प्ले कर सकते हैं. बट ओके जी, इसके साथ साथ मैं बात करना चाह रही हूँ थोड़ी सी, अगर हमारे पास कुछ फैंस अवेलेबल हैं फीफा वर्ल्ड कप के. सो फीफा वर्ल्ड कप जो कल हुआ और अर्जेंटीना एंड स्पेन के दरमियान, और स्पेन ने जो है वो ट्रॉफी अपने नाम की और दूसरी बार स्पेन ने जो है ना ये ट्रॉफी अपने नाम की है. और बहुत बड़ा मैच था और फुटबॉल के बहुत सारे शायकीन हैं पाकिस्तान में और बहुत बड़ी स्क्रीनिंग हुई गवर्नमेंट की जानिब से भी लिबर्टी पे, और इसके अलावा इस्लामाबाद में, कराची में भी बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई और इस मैच के हवाले से. लेकिन मेरा तो खैर इतना नहीं है, मैं आप लोगों से क्रिकेट पर बहुत डिस्कशन कर सकती, बट अगर कोई फुटबॉल फैंस हैं हमारे पास, कोई हमारे लिसनर्स हैं, तो वो ज़रूर आकर शेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स का कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे और क्या हो गया.

अच्छा जी, जैसे जैसे हम वैसे हम बड़े होते हैं ज़िंदगी में, हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इस शो में हम डिस्कस करते हैं और जिस पे मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आता है कि आप लोग उस चीज़ के साथ एग्री भी करते हैं और आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं। यकीन मानो कि मैं खुद भी बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें हम जो है ना कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को सीख लें या विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो पूरी ज़िंदगी काम आती हैं। जिसमें से एक चीज़ जो बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो बड़े भी कहते हैं, सियाने भी कहते हैं कि कभी भी आप जो है ना अपना अगला मूव जो है ना, मतलब आपका अगला कदम जो है, आप क्या करने जा रहे हो, क्या करना चाहते हो, वो कभी भी नहीं बताना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा बताने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों का इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता और वो हर किसी को बताना चाह रहे होते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप सरप्राइज रखते हैं ना, अगर आप बताते हैं करने के बाद, तो इस चीज़ का बहुत बेनिफिट होता है और इस चीज़ की वजह से जो है ना वो आपकी एक वैल्यू भी बनी रहती है। क्योंकि समटाइम्स हम पहले ढिंडोरा पीट देते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं होती, वो काम नहीं होता, तो आपकी अपनी वैल्यू जो है ना वो कम हो जाती है।

अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बात कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनके एक्शंस होते हैं या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है. तो हमेशा जब आपको लग रहा हो कि एक्शंस जो हैं वो बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं कर रहे, या जो वर्ड्स हैं वो एक्शन से मैच नहीं कर रहे, तो ऐसे में आपने हमेशा जो है वो एक्शंस को फॉलो करना है. आपने कभी भी किसी की भी जो अल्फाज हैं, जो बात है, उसकी जो गुफ्तगू है, उस पे ट्रस्ट नहीं करना. उस पे ट्रस्ट करना है कि जो उसके एक्शंस हैं, जो उसका एक्ट है, वो कर क्या रहे हैं, वो एक्चुअली जो कह रहे हैं वो कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. आपने उस चीज़ पे जो है ना वो ट्रस्ट ज़रूर रखना है.

अच्छा एक और चीज़ है जिसपे हम अक्सर बात करते हैं, और मैं हमेशा ये बात करती हूँ ना कि आप अपनी बाउंड्री सेट करें या प्रोटेक्ट योर पीस। इस चीज़ पे जितना जितना जितना आप कोशिश कर सकते हैं ना, जितना काम कर सकते हैं ना, आपकी ज़िंदगी का सुकून इसी चीज़ में है कि आप उन लोगों को ज़रूर जो है ना कट ऑफ करें कि जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, जो आपके अंदर नेगेटिविटी भर रहे हैं या जो आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, और जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपके अंदर इस तरह की नेगेटिविटी जो है ना या आपका सुकून ख़राब करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनसे जितना आप कट ऑफ हो सकते हैं ना उतना आपने कट ऑफ होना है, उतना ही आपने अपने पीस को प्रोटेक्ट करना, और उसके लिए आप जितनी कोशिश कर सकते हैं गो फॉर इट, आपको वो करना चाहिए।

अच्छा एक और चीज़ बहुत होती है, हम इसे अक्सर जो बच्चे हैं ना, मतलब लाइक इवन सिबलिंग्स में भी ऐसे होता है, बहन भाइयों में भी ऐसे होता है कि जो ज़्यादा चिड़ खाता है ना, जिसको ज़्यादा तंग करने का, जिसे कहते हैं ना जो ज़्यादा चिड़ खाता है उसी को तंग करने का मज़ा आता है। सो ऐसा होता है कि आप नोट करें कि किसी भी वजह से किसी भी घर में जो है ना, अगर इस तरह का कोई मामला होता है ना, कोई एक बच्चा होता है जो ज़रा सेंसिटिव होता है, जो जल्दी जो है ना चिढ़ जाता है, या जिसको थोड़ी बातें ज़्यादा बुरी लगती है, तो सब मिलके जो है ना उसको तंग करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी अगर आपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है ना, सो आपने जो है ना अपने आप को अगर पावरफुल बनाना है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा काम, मतलब पुरसकून इंसान बनना है कि कोई कुछ भी कहता है ना, फिर आप किसी के जो जिस किसी का एहसान, जिसे कहते हैं ना कि अच्छा एक शिकार होना, एक आसान शिकार होना कि कोई भी आए और आपको आके चढ़ाए और आपको तंग करे, इरिटेट करे, तो ऐसा जब आप अपने आप को इतना काम कंपोज रखेंगे ना, अपने आप को पुरसकून रखेंगे, तो कोई भी आके जी आपको तंग नहीं कर सकता, कोई भी आके जो है ना आपको चढ़ा नहीं सकता। और एक हद तक कोई चढ़ाएगा, और फिर उसके बाद जब उसको समझ आ जाएगी कि नहीं इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर कोई नहीं आपको चढ़ाएगा।

अच्छा ऐसे भी होता है ना कि आपको जिंदगी में बड़ी लेट समझ आती है इस चीज़ की कि कोई आपको क्यों चढ़ाई जा रहा है, और आप कहते हैं नहीं नहीं ये लोग मुझे तंग करते हैं, लेकिन आप एक्चुअली उस चीज़ को ना, उस फॉर्मूला को समझ नहीं पा रहे होते कि कहीं पे ना आपको उनको रिएक्शन नहीं देना, और जब आप रिएक्शन देना बंद करेंगे ना तभी जाकर जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना आपकी जान बख्शी हो गया, तभी जाके वो समझेंगे कि आपको चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी कभी आप खुद भी स्टेज पर आ जाते हैं कि आपको अपने से कोई छोटा मिल जाता है, या आपको कोई इस तरह का इंसान मिल जाता है जो ज़रा जल्दी चीज़ों को फील करे, इरिटेट हो, तो फिर आप कहते हैं कि जी चलो जी अब मुझे भी कोई मिल गया, मैं भी किसी को चढ़ाऊँ, लेकिन ये गलत बात है।

ऑलराइट वेलकम बैक वंस अगेन। और बहुत सारे लोग मुझे पता है कोशिश कर रहे हैं हमारे कॉलर्स कॉल मिलाने की, और बस कोशिश करते रहे, मेरी भी कोशिश है कि कॉल अटेंड कर सकूं और कॉल जो है वो कनेक्ट हो सके। बट ड्यू टू दिस वेदर और इतनी शदीद बारिश के बाद जो है वो कुछ हद तक जो है ना हमें कुछ टेक्निकल इशूज़ का फेस करना पड़ रहा है। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग जितने हो सके कमेंट्स कर सकते हैं फेसबुक पर, face.com/F11Lahore के पेज पर आपने जाना जी, वहाँ पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट में आज कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स शामिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से कमेंट्स पे बात हो सके। इसके अलावा आप लोग कॉल्स भी ट्राई करते रहे 04111111 में भी ट्राई करती हूँ कि मैं कॉल्स जो हैं कनेक्ट हो जाए और मेरी आप लोग से बात हो जाए। एनीवेज जी, हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसी एडवाइसेस थी जो कि मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी हम सीखते हैं और सारी ज़िंदगी लग जाती है शायद इनको सीखने में, और इन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम सीख लेते हैं लेकिन शायद हमें पता भी नहीं होता कि हमने सीखी हैं, और शायद कभी उन पे बात भी नहीं होती, शायद कभी समझ भी नहीं आती। इसमें से एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके पास जो है ना हमेशा जो है आपके पास अपने पैसे होने चाहिए। मतलब यू ऑलवेज, आप जहाँ भी जाएँ चाहे आपको कितना ही पता है कि आप अपनी क्लोज फ्रेंड्स के साथ मूव कर रहे हैं, फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं, बट हमेशा जो है ना आपके पास जब अपनी पैसे होते हैं ना, अपनी एक अमाउंट होती है आपके पास, और आपकी सारी ज़िंदगी जो है ना आपको एक सुकून रहता है, एक इंडिपेंडेंस फील होती है। और यकीन माने वो जो फ्रीडम होता है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम, जो एक आज़ादी होती है आपके पास कि आपके पास अपनी खुद की कमाई है या आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात हो जाते हैं, सो आप किसी भी मोमेंट जो है ना आप फ्री होते हैं, आपके पास फ्रीडम होता है। ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें शायद पता भी होती है, घर में सिखाई भी जाती है, लेकिन कभी इसका उस तरह से मतलब नहीं समझ आता। और ज़िंदगी में कभी फिर कोई ऐसा पॉइंट आता है जब आपको समझ आता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पास अपने लिए, खुद के लिए जो है ना वो पैसे होने कितने ज़रूरी हैं। आई होप कि आप लोग भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मेरा क्या पॉइंट है।

अच्छा एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है जिस पे अक्सर कहा भी जाता है कि जी अक्सर रोने को जो है ना कहा जाता है कि बहुत वीकेस्ट इंसान है, कमज़ोर दिल लोग जो है ना वो रोते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि रोना जो है ना वो अच्छा होता है। समटाइम्स आपको रो देना चाहिए, आपको रो लेना चाहिए, अकेले में तन्हाई में जो है ना वो रो लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे आपकी अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो भी एक तरह से निकल आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद जो है ना, लेकिन आपने ये ऐसा नहीं करना कि मतलब बस फिर रोते रहना, आपने एक टाइमर सेट करना है अपने साथ, एक टाइमर लगाना है कि इस टाइम तक जो है ना मैंने बस रो के जो है ना अपनी जो भी प्रेशर है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, सब चीज़ों को बाहर निकालना। और उसके बाद वंस वो टाइमर ख़त्म होगा उसके बाद आपने दोबारा वैसा नहीं करना, आपने स्टैंड बैक करना है, आपने स्ट्रांग बनना है और आपने उस चीज़ को जो है ना बिल्कुल अपनी रूटीन नहीं बनाना। हाँ, एक स्पेसिफिक टाइम आपने लिया अपने आप को काम डाउन करने के लिए, अपने आप को ईज़ करने के लिए, उस सारी एंजाइटी स्ट्रेस गुस्से को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका वो टाइमर ख़त्म हो उसके बाद आपने खुद को वापस स्टैंड करना है, खुद को उतना ही जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाना है आपने।

और आइडियल स्ट्रॉन्ग बनाने पे बात कर रहे हैं हम, एक ट्रैक शामिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि मीन वाल हम कुछ ऑफर कॉल्स जो है वो शामिल कर सके, कुछ कनेक्ट हो सके और थोड़ा सा ये मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो सके ताकि मेरी आप लोगों से बात हो सके। सो अभी ट्रैक ऐड करते हैं और साथ ही साथ कोशिश करते हैं ऑफर कॉल्स लेने की।

दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, न

All right. Welcome back once again, Radio Pakistan FM 101 के live winners Lahore studio से एक बार फिर आप सबको welcome करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, मेरा और आपका साथ आएगा जी, ठीक जी, 8 बजे तक 6:42 PM on the dial, और 20 जुलाई 2026 है, दिन है जी आज पीर का, और आज एक वर्ल्ड डे भी मनाया जा रहा है, और वो कौन सा दिन है उस पर भी बात करते हैं। आज जी वर्ल्ड चेस डे मनाया जा रहा है, शतरंज, अगर आप लोगों को खेलनी आती है, बहुत सारे लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है और बड़ी माइंड गेम होती है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको अपनी मेमोरी स्ट्रांग करनी है ना, और आपको पता चले, जैसे अभी हम लाइफ गोल्स की बात कर रहे हैं, और मैं आपके साथ बहुत सारी एडवाइसेस शेयर कर रही हूँ ना कि ज़िंदगी में ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और ये सारी वो लर्निंग्स हैं ना जो हम सीखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम ज़िंदगी से सीखते हैं। सो चेस इज़ वन ऑफ द गेम जो कि कहते हैं कि आपको इतना शार्प करती है ना, क्योंकि उसमें आपने चाल चलनी होती है, आपने देखना होता है कि किस तरह से मैंने जो है वो चेकमेट करना है, किस तरह से मैंने अपनी जो है ना पूरी गेम की स्ट्रैटेजी होती है, और बहुत सारी उसमें मूवमेंट्स होती हैं जो कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप खेलते हो, आप चेस के एक्सपर्ट बनते जाते हो, और आपको जो है ना आपको वो मूवमेंट्स आती हैं, आपको पता होता है, आपको ट्रिक्स पता होती हैं। सो चेस इज़ वन ऑफ द गेम जो कि आपने अगर अपने आप को शार्प करना है ना, तो आपने चेस ज़रूर सीखनी है, और आपको मज़ा आएगा चेस खेलने का। अगर कोई खेलता है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपकी फेवरेट गेम है चेस। वैसे तो हम सारे तकरीबन लगे हुए ना लूडो पे, लूडो तो हमने सीख ली है, और अभी अगर कोई आके कहता है ना कि मुझे लूडो खेलने नहीं आती, तो मैं कहती हूँ कि कैसे, मतलब ये तो मुझे लगता है कि हमने जो है ना बाय बर्थ ही सीख ली है लूडो। बट एनीवेज जी, आज जो है वो शतरंज का आलमी दिन है, चेस का डे है, सो अगर कोई चेस खेलता है सो ज़रूर जी आप लोग बता सकते हैं कि कितनी डिफ़िकल्ट है और कितनी आसान है, और वंस जब खेलना आ जाता है तो फिर कितनी आसान है, और कितना इस चीज़ का आपको फ़ायदा होता है इस गेम को खेलने का, और कितना आपका माइंड जो है वो शार्प होता है इस गेम की वजह से। एनीवेज जी, मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जब अभी मैं आपके साथ बहुत सारी एडवाइसेस शेयर कर रही थी, जिसमें एक बात मैंने की और जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट भी था कि शायद आप लोग उस चीज़ को उस तरह से समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, जो मेरा पॉइंट है कहने का कि आपके पास हमेशा जो है ना आपके अपने पैसे होने चाहिए, आपके पास हमेशा ये इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। सो अभी तारिक साहब हमारे साथ ऑफ द एयर मौजूद थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा एक अरसे के बाद इनसे बात करके। इन्होंने ये बात की, इन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि अगर आप खुद कमाते हैं तो आपके पास हमेशा जो है ना मंथली सेविंग्स होनी चाहिए, आपके पास अपनी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो है ना आपके पास एक अमाउंट होनी चाहिए कि आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर सके। कोई ऐसा मामला हो जाता है, आपके पास उसके लिए एक सेविंग्स होनी चाहिए, और आप लोगों से जो तवक्कोआत हैं वो जितनी कम रख सकते हैं उतनी कम रखें, क्योंकि वो तवक्कोआत जो हैं वो अटेम्प्ट्स नहीं पूरी होती हैं, और कभी कभी हो भी जाती हैं तो कभी कभी नहीं होती, लेकिन इससे आपकी अपनी वैल्यू गिरती है। तो हमेशा जो है ना, चाहे मैं कहती हूँ अगर आपको पॉकेट मनी भी मिल रही है ना बींग अ स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं और आप अभी क्योंकि खुद अगर अर्न नहीं कर रहे या सेल्फ अर्निंग पे नहीं आप, तो अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है घर से, तो आप उसका भी कुछ हिस्सा जो है ना वो सेविंग्स करने की आदत अभी से डालें, अभी से। दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट कि अगर आपको सेविंग्स करनी आती है ना, तो यकीन माने आपको सारी ज़िंदगी ये चीज़ काम देगी, और सारी ज़िंदगी जो है ना आप इस चीज़ पर शुक्र अदा करेंगे। अच्छा जी, लास्टली दो बातें जो है ना मैं करना चाहूँगी, और उसके बाद मैं चाहूँगी कि हम कमेंट्स की जाने बढ़ें, क्योंकि मैंने आप लोगों से बार बार ये चीज़ मैं मेंशन कर रही हूँ, जो अब सुन रहे हैं वो उनको भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग कॉल्स ट्राई करते रहे, मेरी कोशिश है कि जितनी कॉल्स मिल सकती है कनेक्ट होती हैं। ड्यू टू रेन, ड्यू टू वेदर हमें कुछ इशू आ रहा है, डिसकनेक्ट हो रही हैं कॉल्स, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितनी कॉल्स हो सकें मैक्सिमम जो है जितनी कनेक्ट होती हैं वो हम ज़रूर लें। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, आज आप लोगों ने भरपूर दिन गुजारना, आप लोगों ने फेसबुक पर कमेंट करना है जी, fizz.com/fmanullahore के पेज पे आपने जाना है, पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर जो है ना वो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आप कहना चाहते हैं मौसम के हवाले से, कल के मैच के हवाले से, फीफा के हवाले से, चेस के हवाले से, या किसी भी लाइफ एडवाइस के हवाले से आप कुछ भी कहना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, लास्ट टू पॉइंट्स जिन पर मैं बात करना चाह रही थी, जो कि मुझे लगता है कि
बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन. पता नहीं, मुझे हर पॉइंट ही ऐसे लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक जो चीज़ है ना, हम जब भी अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हम कैसे एक अच्छा पावरफुल इंसान बन सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं जिसकी सब इज्जत करें. तो उसमें एक चीज़ है कि एक तो आपका पोस्चर, आपका बैठने का, उठने का, बात करने का जो अंदाज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरी जो चीज़ उसमें ऐड होती है ना, वो ये है कि जल्दबाजी ना करें हर चीज़ में, हर मामले में, हर काम को करने में. स्पेशली जब आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, जिस किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, या आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं और उसमें आप जल्दबाजी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस चलो चलो चलो चलो, या फिर आप कह रहे हैं जल्दी से बस बता दो, जल्दी से कर लो, तो उस चीज़ से क्या होता है कि लोग जो हैं जब देखते हैं कि आपका पोस्चर अच्छा है और आप जल्दबाजी नहीं कर रहे किसी चीज़ में भी, किसी डिसीजन में, किसी बात को करने में, आप सोच समझ के बात करें, तो ऐसे में लोग जो हैं वो आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, सेंसिबल हैं, सोच समझ के बात करते हैं. आपका उठना बैठना, आपकी हर चीज़ जो है ना, उनको एक जैसे कहते हैं ना, अट्रैक्ट कर रही होती है कि वो आपकी इज्जत करें. और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये तो हम सब जो है ना इस पर जितना डिनाई कर सकते कर रहे हैं, लेकिन ये हक है और ये सच बात है कि अगर अगर अगर जो है ना, जो इंसान आपके साथ किसी के बारे में कोई बात कर रहा है ना, किसी की कोई गॉसिप कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है किसी के हवाले से, तो यकीन माने आपके बारे में भी बात की जा रही होगी कहीं ना कहीं किसी और से, और वही इंसान जो है आपकी बात भी किसी और से कर रहा होगा. तो ये चीज़ जो है ना बड़ी मैटर करती है. हम अक्सर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना कि भाई ये हमारा जो है ना एक दोस्त है, या कोई इस तरह का आपका लिंक है, या आपका इस तरह का जो है वो ताल्लुक है जिसमें आपको लगता है कि ये इंसान जो है ना बस मुझसे बाकी सबकी बातें कर रहे हैं. लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप वहाँ से उठते हैं, आपकी जगह कोई और आता है, तो आपकी बात भी की जाती है. मतलब आप भी टॉपिक होते हैं, आपके बारे में भी गॉसिप की जाती है. सो अगर आपको लगता है ना कि आपके बारे में बात नहीं की जा रही, आपके बारे में भी बात की जाती है.

ऑलराइट 6:50 PM ऑन द डायल और हम बात कर रहे थे. बहुत सारी लाइफ एडवाइसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की. अगर इस पे आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर ये कोशिश करें आप लोग कॉल्स मिलने की, और कोशिश करें आप कॉल्स डायल करने की. मैं कोशिश करती हूँ कि कॉल्स मिल सके. 0422111 पर आप कॉल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं. आई वुड से कि आप लोग आज ज़्यादा कमेंट्स करें. fizz.com/FO101 Lahore के पेज पर जाना, अपने पोस्ट अपडेट लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. कमेंट्स में जो है वो ढेर सारी बातें करेंगे इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद.

तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है, अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे मन को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ, तू समझे मुझे अब भी, तू जैसे कोई नूर है, कोई नूर है तू एक फितूर है, तू इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून सा

शाम के 7 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। ईमान वाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवे के बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना पाकिस्तान को खिते का तिजारती और लॉजिस्टिक मरकज बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और कनाडा ने नई गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और तहफ्फुज़ के माहदे के जरिए तालुकात को वसअत देने के अज़्म का इजहार किया है। सरसब्ज पाकिस्तान इकदाम के तहत बंजर जमीन को काबिले काश बनाया जा रहा है। और भारतीय हुकूमत ने इजहार राय की आज़ादी को दबाने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक नया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया है।

0: 오케이?
1: 오케이.
2: 슈크리아, 아크네 FM 101 듀운 키야.

All right. Welcome back once again, Radio Pakistan FM 101 के Live in Lahore Studios से. जी हाँ, लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आज हमना खान को, मेरा और आपका साथ है. ठीक जी, 8 बजे तक 7:06 हुए हैं. आज है 20 जुलाई 2024, दिन है पीर का. और आज जो आलमी दिन मनाया जा रहा है वो शतरंज का आलमी दिन है, वर्ल्ड चेस डे मनाया जा रहा है. उसी हवाले से हम बात कर रहे थे. मैंने आप लोगों से पूछा कि एक डिफ़िकल्ट गेम होती है, यकीन माने, इसको सीखना और इसको समझना और इसको खेलना जो है वो बाकायदा एक डिफ़िकल्ट टास्क है, मुश्किल होती है. और लूडो जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होती. हम सब तो लूडो एक्सपर्ट हो गए हैं ना. लेकिन अगर कोई है, कोई जिनको शौक हो, मेरे लिसनर्स में से कोई अगर हैं जिनको चेस खेलनी आती हो, शौक हो, तो ज़रूर जी आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. और इसके साथ साथ जी, अभी ऑफ द एयर हमारे साथ एहसन खान मौजूद थे और ये कह रहे हैं, मैंने पूछा कि मौसम कैसा है वहाँ भक्कर में, तो इन्होंने कहा कि लाहौर से बारिश तो नहीं पहुँची लेकिन बादल और हवा जो है ना वो पहुँच गए हैं. और क्या ही मज़े हैं जी. ये भी एक बहुत मज़े की यूनिक डिश है जिसका मैंने पहली बार नाम सुना है. और ये है जी मूसा खेली पुलाव, जो कि इनके लिए बन रहा है ख़ास तौर पे इनकी दावत के लिए. और कहते हैं कि इसका मसाला मिलता है मूसा खेल से, और इसका पुलाव भी जो है उसके स्टॉल्स वगैरह लगते हैं बहुत जल्दी बिक जाता है. तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा मज़ेदार पुलाव होता होगा. अच्छा, वैसे भी ना पुलाव और बिरयानी में जो है ना एक ये चलती रहती है, मतलब आपके लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बिरयानी में मसाले होते हैं. बिरयानी एक अपनी अलग दुनिया बिरयानी की. और जब हम पुलाव की बात करते हैं तो बड़ा एक साफ़ सुथरा सा, मतलब साफ़ सुथरा इन अ सेंस के कलरलेस होता है लेकिन टेस्ट, फ्लेवर, यखनी और मतलब मज़ा आता है. एक पुलाव का एक अलग मज़ा होता है, बिरयानी का एक अलग मज़ा होता है. ऊपर से लाहौर में इतना अच्छा मौसम हुआ, बारिश हुई है खुल खुला के, और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो तो फिर दिल करता है कि बस बंदा जो है ना अब शो छोड़ के जो है ना आप कहीं से आपको जो है ना मिल जाए. बट एनीवेज जी, आप पुलाव जो है वो इन्जॉय करें. इसके अलावा शतरंज के हवाले से, चेस के हवाले से इन्होंने कहा कि जी बड़ी मुश्किल होती है और मेरे से नहीं होती, इतनी सर खपाई. तो बिल्कुल ठीक है जी, खेली भी है इन्होंने लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, वाकई बहुत मुश्किल होती है गेम जो है ना, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है. और जब तक आप सोच रहे होते हैं, और ऐसा भी होता है ना कि इस खेल में आप लूडो की तरह नहीं खेल सकते ना कि बस चलो कोई नहीं गलती हो गई. या जो गलती हो गई ना वो बस फिर गलती है. वो फिर एंड है उसका, कोई कमबैक नहीं होता फिर. यहाँ जो गलती है वो गलती है.

0: अच्छा जी, हम कोशिश करेंगे लाइव कॉल से भी शामिल कर सकें अगर कनेक्ट हो जाती है 0422111111 पर, क्योंकि वेदर इश्यूज हैं अगेन, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग कमेंट कर सकते हैं fizz.com/FO11 लाहौर के पेज पे, आपने जाना जी पोस्ट अपडेट, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स जो वो शामिल करें। अभी लेट्स सी, कॉल्स तो आ रही हैं, लेट्स सी इफ इट कनेक्ट्स, कोशिश कर लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान।
0: मैं कहती हूँ जी, वालेकुम अस्सलाम। ये मौसम लगता है आपके हक में चला गया सारा।
1: जी आया नु अलन वसलन मरहबा वली करी आया नु ते बखैर आ गया एंड गुड गुड गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग जी, मुझे लगता है सारा मौसम आपके हक में चला गया आज।
1: यार तू इतनी दफा कॉल्स मिलाई है, बेल जाती है, टू टू होके बंद हो जाती
0: है। बस ऐसे ही
1: रैंडम ही उठाई है, ऑफियर भी और ऑन एयर।
0: देख लें आज आपका दिन है जी, हमारा नहीं है। आप गुड इवनिंग जी, मुझे लगता है सारा मौसम आपके हक में चला गया आज।
1: यार तू इतनी दफा कॉल्स मिलाई है, बेल जाती है, टू टू होके बंद हो जाती
0: है। बस ऐसे ही

0: मुश्किल होती है। मुझे तो आज तक साइकिल चलानी नहीं आती, मुझे बैलेंसिंग नहीं आती।
1: साइकिल मैं चलाती रही हूँ लेकिन अच्छा। बचपन में चलाई है, अब नहीं चलाती।
0: अच्छा।
1: और क्रिकेट भी बचपन में बहुत ज्यादा खेली है, जब सारे गर्मियों में सो जाते थे ना दादू दादा बू चची लोग सारे अम्मी
0: ठीक
1: लोग,
0: है
1: तो हम बच्चे बच्चे मिलके ना सारे खेलते थे। फिर वो जब दौड़ को बॉल लगती थी ना फिर सबसे डांट पड़ती थी, और मैं और मेरी आपी छुप जाती थी, और जो कजन थे ना चाचू के बेटे उनको फिर अच्छी खासी डांट पड़ती थी। हाँ बच जाती थी।
0: ठीक है, तो आप लोग वो शरारती बच्चे थे कि जब बड़े सो रहे होते थे उनका आराम का टाइम होता था तो आप लोगों को खेलना याद आ जाता था।
1: क्या करते है ना, अभी टाइम ही उस टाइम मिलता था, फिर स्कूल भी जाना, ट्यूशन पारा पढ़ने भी जाना, फिर
0: ये बात है।
1: टाइम उस टाइम मिलता था।
0: तो आप बैटिंग ज्यादा अच्छी करती थी या बॉलिंग?
1: मैं बैटिंग ही करती थी, बॉल करानी नहीं थी आती मुझे।
0: अच्छा, बॉल करानी, तो बैटिंग से कोई छक्के चौके मार लेती थी या वो भी बस ऐसे ही शौक किया?
1: लगती होती थी बॉल जाके कमरों में।
0: ठीक है जी, ठीक है।
1: फिर उसके अलावा तो अभी वो बस बचपन में खेली है, और अब बचपन में नहीं खेली।
0: अच्छा, अब नहीं खेली, ठीक है। ठीक है जी,
1: बचपन में खेली है ना,
0: बचपन में नहीं खेली। ठीक है जी, नहीं अभी तो आपकी उम्र छोटी है।
1: हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं मुझे अक्सर होता है कि आपके शो में सबके शो में कॉल मिल जाती है, चाहे मुश्किल से मिले, लेकिन आपके शो में मुश्किल से भी नहीं मिलती।
0: चलें जी, आज आपकी किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे लिए लकी डे था कि जो ऑफियर भी कॉल फर्स्ट मेरी थी और लाइव कॉल
0: भी पहली आपकी है। देख लें जी,
1: हैट्रिक
0: हो जाएगी। ओके जी,
1: अगर तीसरी दफा भी कोशिश करूं तो मिल जाए।
0: चलें जी, फिर ट्राई करती रहें आप, ठीक है?
1: हाँ जी, मेरी तरफ से शमसी ग्रुप को, हरीफ अंकल, जीरा अंकल, फरी आंटी और शमीम आपी को स्पेशली बहुत ज्यादा सलाम, दुआ, प्यार, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, इसी तरह
0: आपको
1: की खुशियाँ मिले और आपके नसीब बहुत ज्यादा अच्छे करें।
0: आमीन आमीन। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, पहली सक्सेसफुल लाइव कॉल हमने ले ली है 0421-111 पर। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, कोशिश हमारी जारी है कि जी हम कॉल्स कनेक्ट कर सकें, कॉल शामिल कर सकें। और इसके साथ साथ आप लोग fizz.com/FM111 के पेज पर अपने जाना जी, पोस्ट अपडेट अलग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में जो है ना आप जवाब दे सकते हैं। खैर जी, टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। टॉपिक तो मैंने अनाउंस ही नहीं किया। बातें बहुत सारी है जी, टॉपिक ही नहीं अनाउंस किया। अच्छा जी, टॉपिक आज का ये है कि जी हमें अक्सर बचपन में जो है ना वो कहा जाता था, स्पेशली जो घर के ज़्यादा सेंसिटिव बच्चे होते थे ना, उनको कहा जाता था कि जी कोई नहीं, छोड़ो, बात को जो है ना एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तो हमने बचपन से ये बात सुनी है, और हमने भी अगर किसी को समझाना, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो हम भी अक्सर जो है ना ये ऐसे, क्यों कोई एक ऐसा बच्चा हो जो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाए, बहुत ज़्यादा दिल पे ले चीज़ों को, तो हम यही कहते हैं कोई नहीं, कुछ नहीं होता, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन जी कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वाकई जिनमें ज़रूरत होती है हमें कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिनको एक कान से सुन के दूसरे कान से अगर आपने निकाल दिया ना तो काम खराब हो जाएगा। बट होता क्या है कि जी एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है कि जिन चीज़ों को हमने एक कान से सुन के दिमाग में रखना होता है ना, वो चीज़ें जो है ना दूसरे कान से निकल जाती हैं, और जो चीज़ें हमने दिल और दिमाग में नहीं रखनी होती, जिनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना होता है ना, वही कहीं ना जिसे कहते हैं ना अंदर बस जाती हैं, दिल में भी और दिमाग में भी जो है ना बैठ जाती हैं। सो एनीवेज जी, आपको क्या लगता है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना ठीक है या नहीं ठीक, क्या कहते हैं इस बारे में ज़रा मुझे बताएं। कॉल्स कर सकते हैं 0421-111 पर। इसके साथ साथ जी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं fizz.com/FM111 लाहौर के पेज पे आपने जाना है, पोस्ट अपडेट लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।

0: करी है।
1: तो मैंने कहा छोड़ो छोड़ो इस बात को छोड़ो कि कितनी दफा मिली या मिलाते जाएं।
0: ठीक है जी, ठीक है
1: ना कि जी जी एक एक कान से सुने से और दूसरी से निकाल देते। हाँ। मैंने भी यही सोचा कि चलो एक दफा मिली दूसरी दफा तीसरी दफा छोड़ो छोड़ो बस काल
0: कॉल मिलाते रहो
1: काल मिलाते रहो।
0: ठीक है ठीक है,
1: हो जाए बात। क्योंकि ऐसा मनोमन पे बहुत शोज भी कम हो रहे हैं तो फिर काल भी बंदे की ना मिले तो
0: कोई इशू नहीं जी, कोई इशू नहीं। आपकी कॉल मिल गई। मुझे ये बताएं कि आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं?
1: नहीं जी, वो बीच में ना जब कान के अंदर बात आती है तो फिर दिल भी होता है और वो सारा चीज दिल के ऊपर से गुजर के फिर दूसरे कान से निकलती
0: है। ओए होए होए, तो फिर दूसरे कान से तो निकलती ही नहीं होगी ना, वो तो फिर बस गई अंदर ही।
1: बस कुछ दिन दिल पे रहती है फिर उसके बाद फिर
0: अच्छा फिर निकल
1: आप इसका निचोड़ निकल चुका है अभी, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन
0: अच्छा, लेकिन ये गैर जरूरी सी बातें होती है ना जो दिल में बस जाती हैं, बस फिर ये नहीं निकल पाती। और जरूरी बातें जो हैं वो हमें भूल जाती हैं, वो तो निकल ही जाती हैं।
1: बस ये ऐसे होता है ना कि कुछ लोगों की फितरत कुछ अलग होती है, कुछ की अलग। ये तो जो बंदा बहुत ज्यादा मुखलिस रहता है ना हर बंदे के साथ, उसके साथ अगर कोई भी छोटी सी भी बात करता है तो बैठ जाता है, ये बात नहीं करनी थी ना, मैं इसके साथ इतना अच्छा था या ये था वो था, मैं इसका फला काम किया हुआ था, ये किया हुआ था, तो बिल्कुल मुंह के ऊपर सुना दिया जा रहे थे। वो बंदा थोड़ा विश्वास होता है, फिर बंदा कहता है जाने दे।
0: ठीक है,
1: होता है तो कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल जरूरी है जाने देते हैं।
0: ठीक है जी, ठीक है।
1: क्योंकि जब उम्र इंसान की बढ़ती है ना फिर इंसान को थोड़ा थोड़ा इंसान और ज्यादा क्या हो जाता है, समझदार हो जाता है,
0: बिल्कुल ऐसे
1: समझ ले कि संजीदा सा हो जाता है। लेकिन मैं तो जब छोटा था तो मुझे साइंसदान कहते थे कि ये चुप कर बैठा रहता है क्लास में, बस पता ही क्या सोचता रहता है।
0: अच्छा,
1: तो बस ये है कि कोशिश यही करते हैं जी। अब हमारा की बात पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि वो कह रही थी कि हमने क्रिकेट खेली है
0: जी जी।
1: तो हमने इतनी इकसाम की क्रिकेट खेली।
0: अच्छा,
1: क्रिकेट बनाने वाले भी सोचेंगे कि इन्होंने क्रिकेट
0: मतलब आप लोगों ने खुद से ही उसकी इकसाम निकाल दी।
1: हाँ, हम एक जगह पे खेला करते थे, उसके साथ में ना थोड़ी सा झाड़ियाँ वगैरह थी, ये पौधे ऐसे लगे हुए थे कि जहाँ पे गेंद चली जाती थी ना।
0: अच्छा,
1: तो वो निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। हम कहते थे रन भी रुकने चाहिए चाहे वो 15 भी बन जाए।
0: अच्छा,
1: वो बेचारे दूसरी टीम भागती रहती थी कि अब गेंद निकालें। हमने सिर्फ एक प्लेयर ऐसा रखा हुआ था कि जो ये तो पहले ही हमने आपस में डिसाइड की होती थी ना कि भाई बाल चाहे आपकी जाए गेंद हमारी जाए रन नहीं रुकने चाहिए।
0: ठीक है,
1: तो वो स्पेशली बाल को इधर निकालता था कि बस बाल इधर जाए गेंद और फिर उसके बाद काम शुरू हो जाए रन के हम बाहर लगा देने फिर दौड़ी जाओ।
0: अच्छा, आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा बॉल नहीं रखी हुई थी? बॉल झाड़ियों से जब तक नहीं आएगी तब तक रन लेते रहने।
1: क्रिकेट का जो असूल है ना वो ये असूल कहता है कि आपने 3 रन बनाने हैं, 4 रन बनाने, 5 आप नहीं बना सकते।
0: ठीक है,
1: चाहे बॉल जहाँ पर भी मौजूद है ना फील्ड के अंदर है बाहर है जैसे ही है आपने 4 रन बनाने। लेकिन हम नहीं रुकते थे, हम कहते भाई ये हमने पहले आपके साथ फैसला तय किया हुआ था कि रन नहीं रोकने।
0: ठीक है,
1: तो वो 15-20 रन भी बन जाते थे। तो उसके साथ साथ ना जो थोड़ी बड़ी बॉल होती है ना वो प्लास्टिक वाली जिसके साथ वो नेट भी खेलते हैं वॉलीबॉल
0: जी जी,
1: उसके साथ भी क्रिकेट खेलते रहे।
0: वाह जी वाह, फुल ऑन जो है ना जिसे कहते हैं जुगाड़ लगाना।
1: जुगाड़ इतने लगाए हुए फिर हम ना घर दो बंदे खेलते थे, ये जो कैंचे नहीं होते कैंचे बैट के साथ निकाल रहा है और एक छोटी सी जगह लगाई होती थी इनके गिलास वगैरह रख देते थे घर के अंदर सेम के अंदर।
0: ठीक है,
1: इसके ऊपर लग जाए ना आप 20 रन मिल जाएंगे। दीवारों के साथ और पड़ती दोपहर 12-11 बजे के बाद इधर बखर में कोई शख्स बैठ भी नजर आता इतनी ज्यादा धूप होती। हम 12:30-1 बजे भी खेल रहे हैं, जो ही उन्होंने नमाज पर उठना ना बस फिर वो हम पसीनों पसीने हो चुके होते थे। और फिर एक घर से उधर निकल रहा है एक लड़का और एक इधर निकल रहा है, दूसरी पीछे आ रही है इधर बस फिर।
0: चले जी, आपने लेकिन भरपूर अपना जो है ना बचपन एंजॉय किया क्रिकेट के साथ।
1: बहुत ज्यादा क्रिकेट को तो हमने समझो कि क्रिकेट के तो हमने बहुत बुरे हाल किए और अपने बहुत बुरे हाल किए।
0: चले, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है।
1: बाकी हमारे जितने भी शमशीरी लिस्नर क्लब के मेंबरान हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह करे कोई और कॉलर की भी काम मिल जाए
0: इंशाल्लाह।
1: और ये कोई मसला चल रहा है तो मेरी एसएम 11 की मैनेजमेंट से भी ये अपील है कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए।
0: जी जी इंशाल्लाह। हेलो हेलो, आई गेस जी डिस्टॉर्शन की वजह से जी कॉल ड्रॉप हो गया। एनीवेज जी, हम एक और ट्रैक की जानी बढ़ते हैं और ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है जी, अताउल्लाह सखलवी की आवाज़ में। इस ट्रैक को इंजॉय करते हैं और फिर लौट कर आते हैं, मज़ीद कॉल्स भी शामिल करते हैं 0400111001 पर।
2: ये कोई वसावा ता काफी राखी मैं तेरी चौखट तू सारी जिंदगी

क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।

0: All right. Welcome back once again, Radio Pakistan FM 101 के live in Lahore studio से. जी हाँ जनाब, लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं. आज हमला खान को मेरा आपका साथ रहेगा. ठीक जी, 8 बजे तक, 7:29 PM ऑन द डायल. और एक खूबसूरत सवाल मैंने आप लोग से किया है, और वो सवाल ये है कि जी बचपन से अब तक जो है ना, हमने भी बहुत बच्चों को कहा है, बहुत सारे लोगों को कहा है, और हम भी शायद यही सुनते आए, यही समझते आए. जब कुछ बुरा लगता था, जब कुछ किसी की बात बुरी लगती थी, कोई मतलब ऐसा लगता था कि जैसे नहीं, अब ये बात जो है ना बहुत फील कर रही है, तो बड़े कहा करते थे, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, छोड़ो, दफा करो. तो इस तरह की बातें होती थी. हमने भी आगे जो है ना, अब जब हम बड़े हुए हैं, तो हमने भी आगे यही कहा है, किसी को समझाना है तो हमने भी यही कहा कि कोई बात नहीं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो. बट होता क्या है कि जी, मैंने जो चीज़ नोट की है वो यूजली ये होता है कि जो चीज़ हमें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए, वही कहीं ना दिल और दिमाग में जो है ना आपके रह जाती हैं, बस जाती हैं, और वो नहीं निकल पाती. और उसके बरक्स क्या होता है कि जी, वो चीज़ें, वो बातें या वो चीज़ें जो हमें एक कान से सुन के शायद अपने अंदर फीड करनी थी, कहीं दिमाग में उनको प्रोसेस करना था, उनसे कुछ सीखना था, समझना था, वही हमारे दूसरे कान से जो है ना वो निकल जाती हैं. तो आपको क्या लगता है कि जी, ये जो एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना, इसका कोई फ़ायदा है? या फिर जो है ना, समटाइम्स आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि जो चीज़ें याद रखनी होती, जो एक कान से सुन के फीड करनी होती है ना, वो हम दूसरे कान से निकाल देते हैं, और जो चीज़ें हमें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालनी होती हैं, वो जो है ना हम कहीं अपने अंदर जो है ना सेव कर लेते हैं, उनको हम अपने अंदर जगह दे देते हैं, अपने दिल में, अपने दिमाग में जो है ना कहीं हम उनको बसा लेते हैं. सो एनीवेज, ये अगर आपका भी इसमें कोई कमेंट है, आप भी शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉल कर सकते हैं 04-111-000-101 पर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: खुरम बात कर रहा हूँ लाहौर से.
0: जी खुरम, कैसे हैं आप?
1: जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, ठीक ठाक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह.
1: फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं आपका प्रोग्राम.
0: अच्छा जी, बहुत शुक्रिया. क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लोगों की डिपेंड करता है कि कई लोग दिल में बातें रख लेते हैं, कई लोग निकाल देते हैं कानों से सुनी बात.
0: ठीक है,
1: तो बेहतर तो यही होता है कि कानों से सुनी बात निकाल देनी चाहिए.
0: ठीक है, लेकिन कोई बातें ऐसी भी होती है ना जो ज़रूरी होती है, मतलब जिनको आप सेफ रखना चाह रहे होते हैं कि या ना निकले कुछ, जो आपने कुछ परसीव करना होता है, कुछ सीखना होता है, कुछ समझना होता है, और आइटम्स वही बातें निकल जाती हैं.
1: लेकिन जो लोगों के टॉन्ट वगैरह होते हैं, कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि दूसरा बंदा चिढ़े मेरी बात से,
0: जी जी,
1: उन बातों को कान से सुन के निकाल देना चाहिए.
0: ठीक है, तो आप ये कर लेते हैं इजीली, आपका है ये प्रैक्टिस है आपकी?
1: बस कभी हो जाता है, कभी करना पड़ता है.
0: कभी खुद को खुद समझाना पड़ता है कि एक कान से सुनिए तो अब दूसरे कान से निकाल दो.
1: लाइफ गुजारने के लिए बेहतर है ना कि बंदा बात सुने और निकाल दे.
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी.
1: और दूसरा, क्रिकेट के बारे में बात करना चाहूंगा जी. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अबाउट 40 इयर्स ओल्ड.
0: अच्छा, माशाल्लाह.
1: क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, कजन इकट्ठे होते हैं, सैटरडे की सैटरडे नाइट क्रिकेट हमारा चलता है.
0: ठीक है, वीकेंड नाइट आपकी क्रिकेट नाइट होती है?
1: जी मोस्टली.
0: ठीक है,
1: तो उसमें काफी हम लोग एंजॉय करते हैं, हालांकि मेरे से कुछ बड़े भी हैं, इवन के 50 प्लस के भी हम लोग कजन होते हैं बीच में.
0: अच्छा,
1: तो कह लें कि दो जनरेशन एक किस्म की चल रही होती है, 20s वाले भी होते हैं, 50s वाले भी होते हैं, 40 वाले भी होते हैं.
0: और बल्कि आगे आप लोगों के बच्चे भी डेफिनेटली वो कह रहे होंगे, छोटे, वो तीसरी जनरेशन भी होगी.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: ठीक,
1: कुछ लोगों के बच्चे आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के आने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे बड़े होंगे.
0: ठीक है, और उनमें भी ये शौक होगा फिर.
1: ये
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं और कोई ना कोई गेम जरूर खेलते हैं.
1: जी,
0: अच्छी बात है.
1: डिफरेंट काइंड होती हैं, उसमें वन टिप भी चलती है कि वन टिप करके आपने हर सूरत रन लेना ही लेना.
0: ठीक है,
1: अगर नहीं लेंगे तो आउट हो जाएंगे आप.
0: अच्छा ठीक है,
1: बस डिफरेंट चलती रहती है, बहुत एंजॉय होता है अल्हम्दुलिल्लाह.
0: अच्छी बात है जी, अच्छी बात है.
1: चले जी, आप अपना ख्याल रखिए. मैं असल में साथ ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए जरा
0: जी जी आप बिल्कुल आप ड्राइव केयरफुली जी, ख्याल रखें अपना, और खैर खैरियत से पहुँचे आप
1: जी. थैंक यू.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़. और जी, खुरम हमारे साथ मौजूद थे, और मुझे मज़ा आ रहा है आप लोगों से सुन के मैंने बात शुरू की फीफा वर्ल्ड कप से, और मैंने कहा कि अगर कोई फुटबॉल के फैंस हैं तो वो प्लीज़ सामने आए. अच्छा, वहाँ से बात चली गई हमारी आज के वर्ल्ड डे पे, आलमी दिन पे, जो कि शतरंज का आलमी दिन था, वर्ल्ड चेस डे था, और वहाँ से बात जो है वो क्रिकेट पे निकल आई है, और आप सब जो है ना अब अपनी क्रिकेट वाले एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बट एनीवेज जी, मुझे खुर्रम की बात बहुत अच्छी लगी कि इस तरह से जो फैमिलीज़ कनेक्टेड होती हैं, फैमिलीज बॉन्डिंग होती हैं, वीकेंड्स पे हो गई, मंथली हो गई, या चले हाफ कह लें आप, क्वार्टरली हो गई या एनुअली भी हो गई, मतलब किसी न किसी तरह से फैमिलीज़ कनेक्ट होती हैं, और कुछ इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रखी होती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। एक और खूबसूरत सा ट्रैक शामिल करते हैं जी, ज़रा मौसम भी इस तरह का है और थोड़ा सा शो की अब बेस भी उस तरह की बन गई है, तो मैंने सोचा एक और ऐसा ट्रैक जो है ना वो शामिल कर लेते हैं। इस ट्रैक को इन्जॉय करें जी, साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव कॉल्स भी शामिल करते रहें।

और जी वेलकम बैक वंस अगेन रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाइव ऑन लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आज अमना खान को, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक ठीक ठीक जी 8 बजे तक कर 7:39 PM ऑन द डायल। और हम बात कर रहे थे कि जो हमें समझाया जाता था अक्सर ही कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन होता क्या है कि जी हम बहुत सारी बातें जो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में जो है ना वो रह जाती हैं। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको भूलनी होती है ना वही याद रह जाती है, और जो चीज़ें याद रखनी होती है ना वो भूल जाती हैं। तो ऐसे ही होता है कि कुछ मामलात में आपको एक कान से सुन के ना आपको फीड करनी होती है वो चीज़ें, आपको प्रोसेस करनी होती है, आपको उन चीज़ों को समझना होता है, आपको अंदाज़ा लगाना होता है, आपको सीखना होता है उनसे, लेकिन वो जो है ना दूसरे कान से निकल जाती हैं। और जिन चीज़ों को आपको नहीं रखना होता ना, जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से डिस्टर्ब करेंगी या आपके लिए टाइम वेस्टिंग है, वो चीज़ें जो है ना कहीं अंदर जो है ना वो रह जाती हैं। आपको क्या लगता है कि जी ये जो एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकालना है ये कितना अहम है, और कहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या आपने सारी ज़िंदगी इसको यूज़ किया है, या आप कोशिश करते हैं इस पे अमल करने की कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपका भी अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप लोग कॉल कर सकते हैं 0422111001 पर, और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं face.com/FM101Lahore के पेज पर जाना जी, अपने पोस्ट अपडेट है लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वहाँ भी मुझे बता सकते हैं। और जी कुछ कमेंट्स आप लोगों के शामिल कर लेते हैं जी। हमारे साथ रमज़ान अनवर गुजर हैं जी, शो की तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। और उसके साथ साथ कुछ शिकवे भी कर रहे हैं, क्या शिकवे कर रहे हैं कि जी शायद इनके पास ट्रांसमिशन ठीक नहीं आ रही। उसके अलावा जी और कौन कौन है हमारे साथ, बिस्मा है हमारे साथ, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, लाहौर से हैं जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नज़ीर खोसू है हमारे साथ, और सी बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। किंग फजल खान हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू ऑल जी, अलहम्दुलिल्लाह मलखेल हैं, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, कोयटा से हमारे साथ हैं, वेलकम टू द शो जनाब।

लॉर्ड्स, वेलकम बैक वंस अगेन. इट्स 7:52 PM ऑन द टाइल और कुछ ही मिनट्स के बाद जी शो का इख्तिताम होने जा रहा है. हम बात कर रहे थे कि कितना ही ये चीज़ जो है वो इफ़ेक्टिव करती है आपकी ज़िंदगी में, आप सीखते हैं इस चीज़ से, और कितना ये आपकी ज़िंदगी में जो है ना, जैसे कहते हैं ना, उसे पुरसकून बनाती है, जितना आपकी ज़िंदगी को पीसफुल बनाती है ये चीज़ के, अगर आप एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं. लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं और दो बातें हैं जिन पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है. एक वो होती हैं जो हमें तकलीफ़ दे बातें लगती हैं, जिनकी वजह से हम अपसेट रहते हैं, या हमें किसी किस्म का स्ट्रेस होता है, या हमें तकलीफ़ पहुंचती है. तो उन बातों पे अक्सर जो है ना बचपन से हमें समझाया गया है, हमने भी आगे समझाया बड़े होके कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो. और ये करना आसान ज़ाहिर नहीं होता, स्पेशली उन चीज़ों पर, उन बातों पर जो बातें हमें बुरी लगती हैं या जिनसे, जैसे कहते हैं ना, हर्ट होता है, जिससे दिल टूटता है, उन बातों पर जो है ना ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाती है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे. और बहुत मैंने देखे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कि वाकई एक्चुअली कर पाते हैं, जिनमें इतना हौसला होता है और जो इतने लाइवली होते हैं कि वो वाकई जो है ना किसी की कोई भी बात जो है ना दिल पे नहीं लेते, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं. लेकिन सम हाउ समटाइम्स ऐसा होता है, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने केस की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि नहीं भूलनी होती, नहीं निकालनी होती, वो निकल जाती हैं. लेकिन ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनसे आपको तकलीफ़ पहुंची होती है, कोई चीज़ आपको बुरी लगी होती है, कोई मजाक ऐसा बुरा लगा होता है, वहाँ पर आप जो है ना इस चीज़ को जितना मर्जी पॉसिबल कर लेना, ये दूसरे कान से नहीं निकलती. ये कहीं ना कहीं जो है ना दूसरा कान आपका बंद हो जाता है, कहीं ना कहीं अंदर ही जो है ना दिल और दिमाग में आपके रह जाती है. बिल्कुल जी, जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये कहाँ तो जाता है, सब ही कहते हैं कि जी बात को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन हम भूल जाते हैं, वही बात है कि दोनों कानों के दरमियान एक दिमाग भी होता है और एक दिल भी होता है, और कुछ अल्फाज जो होते हैं ना वो वहाँ जाके सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महफूज हो जाते हैं, मतलब सेव हो जाते हैं, और फिर वहाँ से वो निकल नहीं पाते. और कभी कभी इस तरह के अल्फाज की वजह से जो है ना इंसान का एतमाद जो है, उसकी सोच या उसकी जो खुद एतमादी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, या जो उसका ज़िंदगी पर जो एक वो जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फॉर ईयर्स जिसे कहते हैं ना, इंसान उस चीज़ से नहीं निकल पाता है, ऐसे कुछ अल्फाज भी होते हैं. सो इसलिए हमेशा जो है ना आपको बोलने से पहले ये याद रखना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो अल्फाज हैं, वो किसी की ज़िंदगी का हिस्सा भी बन सकते हैं. जैसे हम बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स याद करते हैं ना, हम कॉल्स पर भी बताते हैं कि ये वाला मोमेंट हमें याद है, वो वाला मोमेंट याद है, किसी की कही हुई कोई बात हमें याद होती है. इसी तरह से किसी की कही हुई कोई इस तरह की जो दिल आज़ारी वाली बातें होती हैं ना, तकलीफ़ दे बातें होती हैं, ये भी किसी की पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और ये जो है ना एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकल पाती. सो हुदारा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें कि आप किसी से क्या बात कर रहे हैं और कितनी बात कर रहे हैं, और वो चीज़ उसके लिए कितनी मैटर करती है, और उसकी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा तो नहीं बन जाएगी क्या, आपके अल्फाज किसी के लिए जो है ना पूरी ज़िंदगी का जो है जैसे कहते हैं ना तकलीफ़ तो नहीं बन जाएगी. तो इस लिहाज से बहुत बहुत बहुत जो है मोहतात रहा करें लफ्ज़ों को अदा करने में, क्योंकि हमें लगता है कि वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन वो शायद नहीं निकाल पाते.

मर्जी एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, लेकिन अच्छी चीज़ों को जो है वो हमेशा अपने दिल और दिमाग में ज़रूर मौका दें कि वो आपके दिल और दिमाग में रह सकें। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं किसी को समझाने के लिए, तो कोशिश करें कि आपके अल्फाज इतने अच्छे हों कि अगर उनके दिमाग में रह भी जाएँ सुनने वाले के, और एक कान से दूसरे कान से ना निकल पाएँ, तो अगर वो दिमाग के बीच में रह गए हैं, कहीं ना कहीं फीड हो गए हैं, तो वो अल्फाज इतने अच्छे हों कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं, आप जो समझाना चाह रहे हैं, वो बात समझ भी आ जाए और वो अल्फाज याद रहें एक अच्छी मेमोरी के तौर पे, ना कि एक तकलीफ़ के तौर पे। इसी खूबसूरत से बात के साथ जी अपनी खूबसूरत सी आज हमदा खान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे 6 to 8 PM। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रेडियो चैनल FM 101।
1: हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे। सोहनी भैन भ्राओ ते मेरे बुजुर्गो, दवाखाना सुलेमान वालों तुहाडी मेजबान साइमा हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे लेके हाजिर है। सलाम कबूल करो। सोहनी भैन भ्राओ, ए प्रोग्राम बहुत ही खास है क्योंकि इस प्रोग्राम विच साडे मुल्क दे खास ते मशहूर तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब तशरीफ लियांदे ने, जिन्हां नूं कई बारी गोल्ड मेडल भी मिलिया है। मेरे बहुत ही सोहने भैन भ्राओ, तुसी फिकर ना करो, बस थोड़ा जिहा इंतजार करो ते लिखो साडा पता ते फोन नंबर, उस तो बाद मैं तुहाडी मुलाकात सुलेमान साहब नाल करवावांगी। ते नोट करो, सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड, लाहौर। फोन नंबर 042-377-27160, यानी 042-377-27160। मोबाइल नंबर है 03-400-414-2608, यानी 03-400-414-2608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com। सोने भैन भ्राओ, हुण मिलने आ जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नू। सुलेमान साहब जी आया नू, बल्कि जी पार के जी आया नू।
2: सहमा जी, जी पार के बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सुलेमान साहब, तुहाडे कोलों कौन जीत सकदा, अखीर तजर्बेकार हकीम हो ना। सुलेमान साहब, मेरा वास चले तो मैं एक ही बारी प्रोग्राम विच सारियां ईमेल्स पढ़ जावां, पर तुसी प्रोग्राम दा वक्त ही घट रख्या है, अजे गल्लां शुरू ही हुंदियां ने ते प्रोग्राम दा वेला मुक जांदा।
2: सहमा जी, तुहाडे लई ते इक हफ्ते दा प्रोग्राम भी घट रहेगा।
1: हाय अल्लाह हकीम साहब, की मैं इन्ना बोल लिया। वैसे हकीम साहब, जे मैं ना ना बोलां
2: जी
1: ते तुसी आप भी उदास हो जाओगे। सुलेमान साहब, क्यों ना हुण ईमेल्स ते एसएमएस पढ़ लईए।
2: जी जरूर।
1: सुलेमान साहब, ईमेल फैसल इमरान साहब दी है। सुलेमान साहब, इन्हां नूं शुगर दी तकलीफ है पर असाबी कमजोरी दी वजह नाल ज्यादा परेशान ने। कहंदे ने कि शुगर दे सबब इन्नी कमजोरी हो गई है कि कुछ भी चंगा नहीं लगदा।
2: अच्छा।
1: बस ज़हन ते बोझ ही रहंदा है, क्योंकि असीं सुणिया है कि शुगर दी कमजोरी नहीं जांदी। सुलेमान साहब, तुसीं इस बारे की कहंदे हो?
2: फैसल भाई, या ते तुसीं सुनियां सुनाईयां गल्लां नूं मन लवो, या फिर मेरी गल ते यकीन करो। ते मैं इस बारे कहना वा कि असाबी कमजोरी शुगर नाल होवे या ब्लड प्रेशर नाल, हर किस्म की असाबी कमजोरी दूर हो सकती है। फैसल भाई, तुसी किसे दिन मेरे को तशरीफ लियाओ, मैं तुहानू उन्हां मरीजां दे बारे दसांगा जिन्हां नू शुगर दे सबब असाबी कमजोरी सी, पर इलाज तो बाद सोहणे रब ने उन्हां दी कमजोरी दूर कर दित्ती। मेरे भाई, तुसी एक बारी इलाज करा के वेखो, सोहणे रब दी मेहरबानी नाल तुहाडे जिस्म विच नवीं ताकत आ जाएगी ते तुसी शुगर दे बावजूद खुशियां भरी जिंदगी गुजार सकोगे इनशाला, क्योंकि इहदा जड़ी बूटियां विच पक्का इलाज मौजूद है।
1: सुलेमान साहब, मेरा ख्याल है कि सब तो भैड़ी बीमारी मोटापा है
2: जी,
1: तुहाडा की ख्याल है?
2: सहमा जी, हर बीमारी खतरनाक हुंदी है, भावें वह नजरा जुकाम बुखार ही क्यों ना हो।
1: सुलेमान साहब, यह गल तो ठीक है, पर मोटे बंदे नूं तां लोकी अजीब अजीब नावां नाल छेड़दे ने। हाय हाय, मोटे नूं किन्ना दुख हुंदा होवेगा। सुलेमान साहब, ईमेल हाजिर है जिहड़ी शकूर सदीकी होरां लिखी है।
2: जी जी।
1: इह कहिंदे ने कि मेरा दिमाग बहुत ही कमजोर हो गया।
2: अच्छा।
1: कुछ याद ही नहीं रहिंदा, नज़र भी डिगदी जा रही है ते वाल चिट्टे हुंदे पए ने।
2: ठीक।
1: मैं सरदाई भी पीना वा पर कुछ भी फायदा नहीं हुंदा।
2: जी।
1: मेहरबानी करके कोई एहो जी दवाई पार्सल कर दियो जिहदे नाल दिमागी कमजोरी दूर हो जावे।
2: शकूर भाई, दिमागी कमजोरी की असल वजह जिसम बलगम ते रेशे की ज्यादती है।
1: अच्छा अच्छा।
2: जो तक रेशा ते केरा दूर नहीं होगा ये तकलीफ ठीक नहीं होगी, भावें तुम 10 साल भी सरदाई पियो। मेरे भाई, तुम खटिया ठंडिया तसीर वाली चीज़ा बिल्कुल छड़ दो, थोड़ा बहुत पैदल भी टुरया करो ताकि जिगर मेदा ठीक रहे। मेरे भाई, जी दवाई मैं तुम्हें पार्सल करवावगा वह बहुत ही अजमाई हुई है, जिहड़ी रेशे ते केरे नूं जड़ तों खत्म कर देंदी है। इस दवाई नाल दिमाग नूं ताकत मिलेगी ते इंशाल्लाह नज़र भी ठीक हो जाएगी ते याददाश्त विच भी इजाफा होवेगा
1: इंशाल्लाह ताला। जी शकूर भाई, हुण तुसी फिकर ना करो ते हकीम साहब दी दवाई इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह तुहाडा दिमाग कंप्यूटर वांगू तेज हो जाएगा। जी सुलेमान साहब, कंप्यूटर तो याद आया कि अजकल कंप्यूटर दा बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है
2: जी,
1: ते इस हवाले नाल इक मरीज दी ईमेल भी आई है।
2: अच्छा।
1: जिहड़ी मैं तुहानूं सुणावांगी।
2: जी जी।
1: पहला इह ईमेल पढ़ लवां। ईमेल सगीर अहमद साहब ने लिखी है।
2: अच्छा।
1: कहंदे ने कि जनाब सुलेमान साहब, मेरा मेदा कुछ खराब हो गया, ढिड विच खब्बे पासे दर्द भी हुंदा है ते खिच जेही भी पैंदी है, भुख नहीं लगदी ते मुंह फिक्का ते कौड़ा हो जांदा है ते साह फुलदी है, रात नूं खब्बे पासे सोणा जिहड़ा ना सुत्ता नहीं जांदा।
2: अच्छा।
1: ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ।
2: ਸਗੀਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

जैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भरना

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है fake, उनके बारे में मेरा है take। I don't care what you think, what

थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रात के 11 बजे अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा है। ईरान के वज़ीर दाखला एक आला सतही वफ्द के हमरा आज रात इस्लामाबाद पहुंचे। इक्तिसादी अमूर के वज़ीर ने कहा है कि मुकामी किसानों और काश्तकारों के मफादात का तहफ्फुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोच

닭 사게야 얼추 포게야 왜 닭 사게야 얼추 포게야 왜 닭 사게야 얼추 포게야 왜 닭 사게야 얼추 포게야

FM 101. A bëllë bëllë, qabu shabë.

while I'm making the beats. Every

Yo. You got it now. Playing more of your favorite.

झाड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे।

0: Beats the heat with a better beat. FM 101.
1: The Artist, Season 1.

Basement, Season 4.